0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था रिलायबल लाइफ सदैव भरी लाए
1: मध्य पश्चिम जान चेक यति बेला दिउँसोको एक बजेको छ।

0: 서마야 첫 번째 누이.
1: 바보, 아레 크리스나.
2: 아레 크리스나 아마.
1: 만트라도 잡이 라샤 찾으네.
2: 에그담.
1: 아니 상카.
2: 서벌 무감 간길이 가리 보자리 아스.
3: 사태 인디 가타나 찰라 치트라 제일러 누이 번이 바베 파르더슨 바이레 고차.
0: 헤레라 바르푸르 만나던전 린호.
4: 아네 보.
5: कौन है वो सारा जमाना टाइगर मुथु वेल
3: हिंदू धर्मावलंबी को महान चाड़ विजयादशमी दीपावली तथा छठ पर्व को उपलक्ष्य में इस पशुपति आई केयर कपासी दांग को तर्फ बट संपूर्ण नेपाली जन में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करदछ।
6: सूर्य को विकिरण बढ़ते आंखा कमजोर होते ग्लोबल वार्मिंग आंखा में रोग अरु थुप्रे समस्या तर समाधान पशुपति आई केयर सेंटर में विज्ञ आंखा का डाक्टर संगे आंखा चेक करने अत्याधुनिक उपकरण हम आंखा सुरक्षा दिने उच्च क्वालिटी का पावर ग्लास र फ्रेम उपलब्ध छन्। अब ढुक्क हुनुहोस् पशुपति आई केयर सेंटर ले तपाईको आंखा को रक्षा गर्नेछ। पशुपति आई केयर सेंटर कपासी दान संपर्क नंबर 9843008804 9843008804 www.pashupatiicare.com।
3: हिन्दूहरूको महान चाड विजय दशमीको उपलक्ष्यमा यस स्वर्गदारी चलचित्र मन्दिर घोराई दाङमा यही असोज 30 गतेदेखि भव्य प्रदर्शन भइरहेका छन्। हाम्रै दंगाली हिरो पल शाहको अभिनय रहेको नेपाली कथानाक चलचित्र आबाट आमा 2
7: गुरु कुकुरको बच्चा कुकुरको बच्चा छोड्ने भाइ यो लावारिस कुकुर हो यसलाई मार्नु पर्छ।
8: त्यहाँ आफ्नो ज्यान फाल्ने गरेर किन गएको त त्यहाँ? त्यो पनि एउटा कुकुरको बच्चाको लागि?
9: तैले केवल कुकुरको बच्चा मात्र देखिस् तर त्यो पर रुखमा बाँधिएकी लासा राम्ररी देखिन्छ। आफू बाँधेकोले आफ्नो बच्चालाई बचाउन सक्छ।

0: वायनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सब कनेक्टेड
1: मध्य पश्चिम एफएम 91.4 मेगाहर्ज

राम राम सन्जे पाँच बजी थारू भाषक मध्य पश्चिम खपरम सारिक राम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। दांकर आप्ती गांवपालिका से दशैं तिहार और छठ पर्व हन लक्षित करते बजार अनुगमन शुरू कई राखल। गांवपालिका से आज पालिका का मुख्य बजार क्षेत्र का सत्रठो किराना पसल में अनुगमन कर लखो। उपभोक्ता हन गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध करीना, बजार में हुई सकना अनियमितता नियंत्रण करना तथा व्यवसाय हन व्यवस्थित बनीना उद्देश्य से सिसनिया मिलनचोक पत्थर गढ़वा पिपरी बिजौरी और मौरीघाट क्षेत्र का किराना पसल में अनुगमन कर गांवपालिका जना राख। अनुगमन का क्रम में कुछ किराना पसल में म्याद गुजरलक तथा लेबल निफिलक सामान फेला परल बाट उसक कुछ पसल में मूल्य सूची निधरलक को एकत्र फर्म का नाव में विभिन्न प्रकार का सामान बिक्री करना करलक समेत पागिल बा। गांवपालिका का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश मल्लाह से चार वर्ग बेला उपभोक्ता वस्तु का माग बहना हुईलक वर्षे उपभोक्ता अंकुरक्ष हित संरक्षण खाद्य वस्तु का गुणस्तर कायम ओ बजार मूल्य पारदर्शी सुनिश्चित कर अनुगमन करगिलक जानकारी दे रख। वहां के अनुसार अनुगमन को क्रम में देगिलक कमी कमजोरी बारे व्यवसाय हन जानकारी करके प्रचलित नियम अनुसार व्यवसाय संचालन कर सचेत करागिल बा। पसल में बिक्री का लाग धरगिलक वस्तु का म्याद लेबल मूल्य सूची व व्यवसाय दर्ता व नवीकरण का अवस्था बारे जांच करगिल रह। चार पर्व के बेला उपभोक्ताओं को दैनिक उपभोग्य वस्तु खरीद कर गुणस्तरहीन तथा म्याद गुजरलक सामान हन जोखिम व्यवहार निपरोस करना उद्देश्य से बजार अनुगमन हन प्राथमिकता देगिलक गांवपालिका जना राखल। अनुगमन से व्यवसाय को अंकला जिम्मेवार बनीना उसक उपभोक्ता का अधिकार संरक्षण का सहयोग पुग्ना अपेक्षा करगिल बा। यातायात क्षेत्र में देखिलक समस्या तथा समाधान को उपाय के बारे में त्रिसुदृश्वरी राप्ती यातायात प्रणाली से दांग पत्रकारों को नक्शे अंतर्क्रिया कार्यक्रम कई राखल। यातायात प्रणाली का अध्यक्ष सुरेश समाल को अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में बरपौना पत्रकार महासंघ दांग अध्यक्ष संतोष वेदी से सार्वजनिक महत्व को यातायात सेवा नागरिक मैत्री हुई पर्ना बटवा रख। यातायात क्षेत्र में देखिना कमी कमजोरी पत्रकारों को नक्शे उजागर करना पर्ना वाकर समाधान यातायात समिति से कर पर्ना फे प्रमुख अतिथि सुवेदी बटवा रख। दशैं तिहार का अवसर में शुभकामना आदान प्रदान करना उद्देश्य का साथ आयोजना करगिल कार्यक्रम में पत्रकार नारायण रजौरे आरके शीतल नारायण खड़का उपेन्द्र बस्नेत निरला अर्याल सुनील पोखरियल द्रोण केसी लगायत से यातायात क्षेत्र के बारे में सलाह सुझाव दिए। कार्यक्रम में यातायात प्रणाली का अध्यक्ष सुरेश समाल से पत्रकार हुकनक जवाब दी। यातायात क्षेत्र में देखिले कमी कमजोरी समाधान करते नागरिक मैत्री सेवकला अपना हुक्र प्रतिबद्ध रलक बटवा रख। त्रिसुदोसरी राप्ती यातायात प्रणाली का दांग भितर ओ क्षेत्र में विभिन्न लम्बा दूरी का 9 रूट का 700 गाड़ी रहल बातकल से 2500 जना मजदूर रलक फे रोजगारी में रहल बाट। त्रिसुदोसरी राप्ती यातायात प्रणाली का प्रशासकीय सचिव नारायण प्रसाद निपाने से विशेष प्रवेश करायल रह कार्यक्रम का सहजीकरण पत्रकार शरद रेग्मी करल रह। दशैं तिहार पर्व लघु ऐना करना बेला में घोराई उपमहानगरपालिका दुई ठाटी खोली निवासी 41 वर्षीय अनंत बहादुर सार्की मंद्रा बजीनामा व्यस्त रहलबाट चाड़ पर्व को समय में मंद्रा बिक्री करलसंग मर्मस्य लम्मा मजा आमदानी करना हुईल पास चाड़ जन कामदार धैकन मंद्रा बनीना से मर्मत का काम करती आरखल। चाड़ पर्व हन मौलिक संस्कृति व लोक जीवन का पहचान कना हुईल घंसे लौ मंद्रा किन्ना से मर्मत कला का दैनिक जसो 15-20 जन ग्राहक ऐना करलक उहाँ बटवा रखल। उहाँ के अनुसार दशैं में विशेष तरीकन थारू समुदाय का मन ऐना करल बाटकल से तिहार में और समुदाय का ग्राहक चहल पर हुईना कथा सार्किस परिवार से पुरखा से मंद्राजो बनीना सी भन पेशा का रूप में निरंतरता देती आईल बाट। मंद्रासंग तबला ढोलक लगायत का बाजा बनीना करल बाट उहाँ बटवा रखल। चार वर्ग के समय में अक्कले भ्याई सकना हुईल से चार जन हन दैनिक ज्याला के रूप में रोजगारी में जोरकन उहाँ मंद्रा का घम बनीना क
खरी लगिना समूहका काम संलग्न दैनिक 700 रूपियाँको दर से पैसा देना कर लगभग बतुवा रख्ल। उहाँको अनुसार मन्द्रा बनिना सिप लौवा पुस्तामा फे हस्तान्तरण हुइतिर लग बतुवा रख्ल। बाबा टंक बहादुर सार्की श्री सिखलक सिप अनन्त बहादुर कछावा थमन रास फे पासक समय मन्द्रा बनिना से बिक्री वितरणका काम करतिर लग उहाँ बतुवा रख्ल। वो उत्कृष्ट कार्य सम्पादन ओ नव प्रबन्धनकारी कर्कलकति जिल्ला हुलाक कार्यालय सल्यान देशभरका 4 नमूना हुलाक कार्यालय मध्ये छनौट रहल 152 विश्व हुलाक दिवसको अवसरमा हुलाक सेवा विभागसे जिल्ला हुलाक कार्यालय से सल्यान सहित देशभरक 4 जिल्ला हुलाक कार्यालय हेन नमूना कार्यालयको रूपमा छनौट कर्गिलक सम्मान कर्गिलक हो। हुलाक सेवाक विभाग से आयोजना करलक वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम में सूचना तथा संचार मंत्री डाक्टर विक्रम तिमली सुनासे जिला हुलाक कार्यालय सल्यान का हुलाक अधिकृत चिंतामणि रेग्मी प्रशंसा पत्र हस्तांतरण करगिलक ग्रह कार्यक्रम को कार्य संपादन सुधार सेवा प्रभाग को प्रभावकारिता व नव प्रदर्शनकारी कार्य प्रयासको मूल्याङ्कनका आधारमा नमूना कार्यालयको रूपमा छनौट कर्गिलक जनागिल बा जिल्ला हुलाक कार्यालय सल्यानका प्रमुख तथा हुलाक अधिकृत रेग्मी नमूना कार्यालयको रूपमा छनौट हुइला। उस्तङ्क जिल्लाका सम्पूर्ण हुलाक कर्मीको मेहनत र योगदान रलक बतुवा रख्ल। कार्यालयले आगामी दिनमा हुलाक सेवाहन थप प्रभावकारी व्यवस्थित ओ सेवाग्राही मैत्री बनेकला जिम्मेवार प्रतिबद्ध होकन काम गर्न जनागिल बा। भुइठा आजुक थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह कालसन ज्याफे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सिक्ने बाटी अखसा खबर मसे समाचार कक्ष कसकको संग्रहसँग मैं शालिक राम चौधरी विदाई टू रिजी मध्यपश्चिम ओनिटी रवि राम राम।

0: आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंद आवाज जो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 MHz
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो ठाउँ कोई कसैलाई रोग लागे पोखरा अस्पताल जाऊ सर्जन फिजिशियन हाड़ जोड़ने नसा प्रसूति निर्णय

0: 94.4 MHz मा तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मध्यपश्चिम।
1: ओखती साबुन को अर्को प्रस्तुति बहुगुणी ओखती आयुर्वेदिक तेल लामो अनुसंधान पछि आविष्कार भएको रुगा खोकी नाकबन्द जिउ दुखेको आदि सबैका लागि एकमात्र अचूक तेल जडीबुटीको शक्ति ओखती आयुर्वेदिक तेल मात्र रु 50 मा।
2: कुराहीको लागि आधिकारिक विक्रेता भूषाल स्टोर हस्पिटल रोड कुराहीदान फोन नम्बर 082-5861-210। थप सम्पर्कका लागि हिमालय स्टोर बाल मन्दिर अगाडि निरज स्टोर सब्जी मण्डी नजिक र प्रवेश श्रृंगार दूरसञ्चारदेखि पश्चिम तर्फ।
3: सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवाहरू अब एउटै छाना मुनि।
4: वरिष्ठ हाट जोड्ने तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादव बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली घोराहीमा।
5: डाक्टर अनिल यादवद्वारा दिइने सेवाहरू:
4: हात खुट्टा भाँचिएको, हात खुट्टा झमझमाउने, ढाड कम्मर दुख्ने, हाट जोड्ने सम्बन्धी अपरेशन सेवा।
6: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू:
7: वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखेलद्वारा बिरामी चेक जाँच सेवा,
8: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
9: नशा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्माद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
10: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारीद्वारा चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
11: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसीद्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
12: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्यद्वारा भिडियो एक्सरे सेवा,
13: साथै इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, इको, कल्पोस्कोपी, सिटीजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू।
3: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेसनल हस्पिटल प्राली, सडक विभाग ओह्रालो, घोराई जाँच, फोन नम्बर 082-5861-218।

0: बाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया जन्म को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड।
1: अब दाँत भर्ने दाँत फाल्ने नयाँ दाँत राख्ने दाँत सफा गर्ने चम्किलो बनाउने बाङ्गो टिङ्गो दाँत मिलाउने इम्प्लान्ट सर्जरी आदि दाँत मुख गिजा सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार एकै ठाउँमा प्राइम डेन्टल क्लिनिक।
2: प्राइम डेन्टल क्लिनिक नयाँ अत्याधुनिक बिरामी मैत्री क्लिनिकमा अनुभवी चिकित्सक डाक्टर आयुष गौतम तथा अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा उपचार भइरहेको छ। स्थान घोराई दाङ तुलसीपुर चोकदेखि 50 मिटर पश्चिम रोडमा। सम्पर्क नम्बर 082-591-794, मोबाइल नम्बर 98-22-87-74-94।

0: सुरक्षित जीवन जीन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सधैं भरिलाई।
1: अब दाँत भर्ने, दाँत फाल्ने, नयाँ दाँत राख्ने, दाँत सफा गर्ने, चम्किलो बनाउने, बाङ्गो टिङ्गो दाँत मिलाउने, इम्प्लान्ट सर्जरी आदि दाँत मुख गिजा सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार एकै ठाउँमा। प्राइम डेन्टल क्लिनिक।
2: प्राइम डेन्टल क्लिनिक नयाँ अत्याधुनिक बिरामी मैत्री क्लिनिकमा अनुभवी चिकित्सक डाक्टर आयुष गौतम तथा अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा उपचार भइरहेको छ। स्थान घोराई दाङ तुलसीपुर चोकदेखि 50 मिटर पश्चिम रोडमा। सम्पर्क नम्बर 082-591-7994, मोबाइल नम्बर 98-22-87-74-94।